उनमें पूरे उतरे, मैं तुमको पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल व करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता, और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े होते थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोजे आखिर पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोजख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है।

0: आमीन।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: हमारी web.com की पेशकश।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: वो मदीना जो कौन है उनका ताज है, दुनिया की पेरिस को क्या कहते हैं, दुल्हन कहते हैं। पेरिस को क्या कहते हैं, दुनिया की दुल्हन दुल्हन कहते हैं। बेकनों का ठिकाना ही कौन है, इनका दूल्हा मदीने में, कौन है इनका दूल्हा मदीने में। पेरिस दुल्हन कैसे हो सकती है, दुनिया की दुल्हन तो मदीना। जिसने मदीना शरीफ को दिल की आंखों में देखा,

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6
1: ओ पिता जा पिता पिता देव से नूर
0: मुझे जो आवारा हो।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Uncle Habib, Rishta Bharose Ka.
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।

ॾियारण लाइ तयारु आहियूं त ईरान एटमी हथियार हासिल करण जो ख़्वाहिशमंद आहिनि। तेहरान सिफारतकारी ऐं इलाक़ाई इस्तेहकाम लाइ पुरअज़्म आहे। एशिया में जंग ऐं अदम तहफ़ुज़ जो असल सबब ईरान न पर इसराइल आहे। ईरान जे सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त ईरानी मुज़ाकरातकार कॾहिं बि मुल्क जी इज़त ऐं वक़ार ते सौदेबाज़ी न कंदा। अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर जल्द पाकिस्तान जी मेज़बानी हेठि शुरू थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान ख़िते में अमन लाइ कोशिशूं जारी रखंदो। अमन लाइ अमरीकी सदर इस्लामी मुल्क जे अॻवान सां ॻाल्हि ॿोल कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सां राब्ते में रहियो। अमन कोशिशुनि में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जूं कोशिशूं बि वाखाण जोगियूं आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवणु आहे त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प मुस्लिम अॻवाणनि सां ॻाल्हियूं कयूं। ॻाल्हियुनि दौरान हाकारी नतीजे जी उमीद पैदा थी। पाकिस्तान ख़िते में पायदार अमन गॾियल एहतराम ऐं इस्तेहकाम लाइ हर मुमकिन कोशिश जारी रखंदो। ख़िते ऐं दुनिया जे अमन लाइ चिंता न पर ॻाल्हियुनि ऐं सिफारतकारी खे तरजीह ॾियणी पवंदी। ईरान आबराए हुरमुज़ खोलींदो ऐं का फीस न वठंदो। पंहिंजा विछायल माइनर हटाईंदो ऐं अमरीका जवाब में नाकामंदी ख़त्म कंदो। अमरीकी मीडिया इम्कानी डील जा अहम नुक़्ता साम्हूं आणे छॾिया। अमरीकी उहिदेदार मूजिब ईरान आज़ादी सां तेल विकिणी सघंदो। इहो सभु डील तहत 60 ॾींहं जे जंगबंदी में वाद दौरान थींदो। वफ़ामती यादाश्त में वाइदो शामिल हूंदो त ईरान कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल न करे सघंदो। रिजाव थियल यूरेनियम जे ख़ात्मे जी ॻाल्हि कंदो। डील में लेबनान जंगबंदी जो ख़ात्मो बि शामिल हूंदो।

डील बावजूद आबना हुर्मुस से असो कंट्रोल हों तर्जुमान खादम अल अंबिया हेडक्वार्टर्स जो चवण है आबना हुर्मुस का गुजरन जो वक्त बेरी टाइम लाइसेंस ईरानी इख्तियारियों जारी कद ईरानी पर्दे तर्जुमान इस्माइल बकाई है एमओयूज आखिरी मरहले में है तफसीली गालू एक का बिन महीन तई जारी रही सकती ईरान अमरीका विच में डील के वेझो पहुंचने वालों गालू वक्त का अगजू आन ईरान जो एटमी प्रोग्राम अना बहस हेठ ना है।

0: 5400710 0300 5187599।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सुनी

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 10 AM. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

असांजो मुआदो अञा मुकमल तौर ते ताए नए थियो, पर असांजो मुआदो ओबामा जे मुआदे खां बिल्कुलु उबतड़ हूंदो। असांजे मुआदे खे अञा ताईं कंहिं ॾिठो नाहे, न ई कंहिंखे ख़बर आहे हुन मुआदे में कहिड़ा कहिड़ा नुक़्ता आहिनि। नाकाम माण्हुनि जे ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾिनो वञे जेके मुआदे जा तफ़सील ॼाणण खां सवाइ तनक़ीद कनि पिया। मुख़ालिफ़ुनि खे ईरान मसलो पहिरियों ई हल करे छॾणु घुर्जे हा। ईरान डील बाबति सुठी ख़बर ईंदी ऐं ख़राब डील न कंदो आहियां।

कोयटा जे शहर चमन में रेलवे फाटक पे धमाके में शहीदन जो अंग वधी 14 थी पयो। शहीदन में एफसी जा टे जवान भी शामिल। वरी वजीर सरफराज बुख्ती के मावन शाहिदन की तस्दीक। शाहिदन चो तो दहशतगर्दन मासूम शहर के निशानो बनाया। वजीर आजम ए सदर पारा चमन फाटक धमाके की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी चो तो दहशतगर्द उन सरप्रस्त पाकिस्तान के नुकसान पहुंचाने चाहन था। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन लाइ कोशिश के नुकसान रसण चाहन था। दुनिया दहशतगर्दन उन सरप्रस्तन असल चेहरो डिसे। वजीर आजम चो तो धमाके सबब मासूम जानू विजी व्यू। दहशतगर्दन जो अड़ी बुजलानी कार्रवाई पाकिस्तानी अवाम जो अजम कमजोर नथियो कन कर सकन। दहशतगर्दन के पहाड़ का पटन वाले अजम से कायम आयू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो भारतीय सरप्रस्ती में सरगर्म नेटवर्क ए पाकिस्तान के दुश्मन जो मुल्क के गैर मुस्तकम करने वाली साजिशों नाकाम थी। पूरी कौम दहशतगर्दी पाकिस्तान के अमन खिलाफ छींदड़ साजिशों खिलाफ एक है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: शदीद गर्मीअ सबब शहरनि खे गुज़ारिश कई वञे थी त सुबुह 11 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ख़ासि एहतियाती तदबीरूं अख़्तियार कनि। गैर ज़रूरी तौर ते ॿाहिरि न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो ऐं उन दौरान शदीद जिस्मानी कम खां पासो करियो। ॿारनि, बुज़ुर्गनि ऐं बीमार माण्हुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो। वधीक पाणी पीओ ऐं महफ़ूज़ रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक ऐं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जे तावन सां पेश कयो वियो।

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: अम्मी, तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क
4: सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज
2: GFM नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hame Diamond Glow Bleach Cream.
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी त सुबह 11 वगे खा शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: Yeah!

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: घर 12 मीटर 47 साला लुत्फ व्यवहार करे तकल पुलिस मौजूद पर दुश्मनी लगी रहा है मामले की जांच शुरू कर छी। आबाद करण जो पानी कोट खिलाफ धरणो भान माइनर लनी शाख की पुछली जी आबाद करण न पीर शाख मोरी वट धरणो हयो। आबाद करण चौथा पाशी खाते जा मलदार पानी विकरो कन पिया पानी फराम करे परेशानी खत्म कई वने।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: 71.6।
3: गर्मी की गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन जो खास ख्याल महफूज रहो। ही अवाम DMA कमिश्नर कराची के एड्रेस के तावन सा।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: रिश्ता भरोसे का
6: हक जो आवाज GA 91.6 सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: इंसान की दिल में कोई और बसता हो और किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपकी कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं थी। जिस हिसाब में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का टूट

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहली लहर FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
6: Ab aapki khoobsurti ka fan. White Age Beauty Cream.

0: हेटर फैन।
1: वाइट डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए। निखरा चेहरा वाइट इससे मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एच ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोदान।
2: के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजा जी एफ एम।

0: फैन, तू ना मेरा है।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। बायोकॉन इंटर

केपी में सवा भी सवात मोटरवे ते वेन कोच में टक्कर यारह जना फौत मोटरवे पुलिस मौजूद इस्माइला वे जो हादसे सबब यारह जना फौत थी गया सत जना जख्मी थी गया।

वामसेद आबाद में आबाद कर जो पानीकोट गुलाब धरणो भान माइनर लुंडी शाख के पुछली आबाद करन पीर शाख मोरी वन धरणो है और शाखन में पानी छोर कर जो मुतालबो टिकराटो वे जो बंबई माइनर जो पुछली आबाद कर जो पानीकोट गुलाब धरणो पानी चोरी रोके पुछड़ ते पानी पहुंचाने जो मुतालबो।

0: लाड़काने में शहीद अब्दुल कादर लगारी एलिमेंट्री स्कूल की माथियाणी जो डीओस से हिरासा करण जो इल्जाम। माजूर कोटा से भर्ती थियल माथियाणी महविश बलोच वीडियो बयान में चाहे डीओज अनीस रहमान जलवानी और डीओज रशीद चांडियो आलो पान के महफूज नथा समझो। न्याणियों घर तई महदूद आन। एडिशनल सेक्रेटरी आशिक हुसैन सिपाही में जुड़ियल बरूकी जांच कमेटी की रिपोर्ट पदरी न थी सकी है। ऑफिसर भी पैं साथी ऑफिसर के बचाण चाहन था। टंडवादम में वधनल बदमनी खिलाफ द्रोही बरादरी पारा धरणो टायरन के पायू। शहर में वधनल बदमनी खिलाफ द्रोही बरादरी पारा पिताई नगर वट टायरन के पायू डई धरणो हयो वियो। अगवाण चो तो शहर ए भरपासे में बदमनी वधी वई आहे। दुआरन खिलाफ कार्रवाई करे अमन बहाल कयो वञे। आईएन एरचे जे स्कूल में छह ॾींहं अॻु पुरसार नमूने फौत थियल शागिर्द जे वारसनि जो स्कूल आॾो एहतजाज। वारसन ऐं सिविल सोसाइटी जे अॻवाणनि जो चवण आहे त निजी स्कूल में शागिर्द साहिल शेख पुरसार नमूने फौत थियो हो। स्कूल इंतज़ामिया मामले खे लिकाए रही आहे। जांच करे इंसाफ कयो वञे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास। आप सुन रहे हैं GFM 88.8। हमारे साथ ही जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड द स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो यहाँ पर जरा आप लोगों को बताया जा रहा है प्रोडक्ट्स के बारे में, और बताया इसलिए जाता है ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि जब आप मार्केट जाएं और परचेज करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो आप लोगों को ये चीज जहनों में हो कि आप परचेज क्यों कर रहे हैं। अक्सर तौर पर देखा जाता है कि आप लोगों को खूबसूरती के मामले में ना जो भी चीज बताई जाती है बस आप लगा लेते हैं। तो अगर आपको ये चीज बताई जाए कि भाई आपके चेहरे पर दाने हैं, फला वाला प्रोडक्ट लगा लो और फला वाली क्रीम लगा लो, मैंने लगाई थी मुझे फर्क मिल गया है, अगर इस तरह का कोई काम करता है ना, इस तरह अगर कोई आपसे बोलता है कि आपकी स्किन पे दाने निकले या ये चीज है, ये मसला है, तो आप ये वाला प्रोडक्ट लगा ले, मैंने लगाया था मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये चीज भी आप याद रखा करें कि हर किसी की स्किन जो होती है ना वो मुख्तलिफ होती है, हर किसी का स्किन टोन अलग अलग होता है। तो अगर उसको उस प्रोडक्ट ने फायदा दिया तो जाहिर सी बात नहीं कि वो भाई आपको भी फायदा दे। तो अगर आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए होते हैं, तो वो आप सारे लोगों की स्किन के ऊपर जो है ना वो रिजल्ट आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जो भी प्रोडक्ट आपको कोई भी बता दे कि भाई मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, आप लगा ले और आप लगाने लग जाते हैं बाद में आपके चेहरे पर जो चाहे, तो थोड़ी सी आप भी ना अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करें और थोड़ा सा वो इन चीजों के ऊपर ध्यान दिया करें कि आपने जो चीजें अप्लाई करनी है वो एक तो ये बात कि वो ऑल स्किन टाइप के लिए, दूसरी बात ये कि वो नेचुरल अज्जा से तैयार शुदा जिनके अंदर ऐसी चीजें ऐड की गई हों, ऐसी चीजें शामिल की गई हों जो कि आप लोगों की स्किन के लिए वाकई फायदेमंद साबित हो। तो अगर आप लोगों को कोई भी थोड़ी सी आप जो है ना वो खुद भी आप देखा करें सहे, और अगर मैं आपको बता रही हूँ व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर बात करूँ तो ये वाकई नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन किसी भी टोन की है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं। और उसके अलावा एवोकाडो शामिल है, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम है, मिल्क में भी है और साथ साथ एलोवेरा भी है। ये तीनों चीजें हैं जो कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के अंदर मौजूद है। तो अगर आप भी नेचुरल अज़ा से तैयारशुदा होने वाले प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप आसानी लगा सकते हैं। तो व्हाइट एज की जो ब्यूटी क्रीम है ये आपके चेहरे पर जो है ना फ्रेश लुक लाती है, आपके चेहरे की स्किन को फेयर बनाती है, आपके चेहरे पर जो है ना साइड इफेक्ट्स अगर काफी ज्यादा आते हैं तो उनको आपकी स्किन को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है और साथ साथ आपके चेहरे पर रिंकल्स हो, डार्क स्पॉट्स हो, ये सारी चीजें भी खत्म हो जाती हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एक नाइट क्रीम है, आप रात के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप इस्तेमाल करेंगे जनाब व्हाइट एज का ब्यूटी सोप। अगर आप सोप लगाते हैं तो व्हाइट एज का ब्यूटी सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइट एज का फेस वॉश लगाएंगे जो कि विटामिन सी से तैयार शुदा है। सोप जो है वो तो भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क से तैयार शुदा है, बाकी अगर हम फेस वॉश की बात करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी है, यानी कि वो विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो जो लोग भाई वाकई नेचुरल चीजें इस्तेमाल करना चाहते हैं, नेचुरल अज़ा से तैयार शुदा होने वाले प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स। ये तमाम जो है ना प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के हिसाब से और आपकी स्किन के हिसाब से तैयार किए गए हैं। और साथ में अगर आप गर्मियों का देखा जाए तो भाई अच्छा खासा सीजन चल रहा है और गर्मियों में हम मेकअप भी नहीं लगा पाते हैं और कोई ऐसा प्रोडक्ट हम तलाश करते हैं जो कि भाई हम लगाएं तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो भी करती रहे, आपकी स्किन प्रोटेक्ट भी रहे। अगर आप धूप में जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं कॉलेज या फिर पढ़ाते हैं, ये तमाम तर जो बातें होती है ना देखा जाए तो उसमें भी आप लोगों को कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि डेली बेसिस पर आप इस्तेमाल करें और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आप व्हाइट एज की लवली क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना ये जनाब रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार शुदा है जिसके अंदर 30 विटामिन के कैप्सूल डाले गए ताकि आप लोगों की स्किन पर जो रिजल्ट्स मिले आपको बहुत ही शानदार मिले। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीम भी ऐड की गई है। सनस्क्रीम का ऐड करना जो है ना वो मुझे ये लगता है कि वो इसलिए

बस ये याद रखा करे मुझे फ्राइड। और उसके अलावा हेंजी हिदायतुल्लाह बदील भी भेजिए जरा। कराची में गर्मी कम कम बादल है, कराची आ जाओ चाचा के पास। अब तो भाई आ गई, अब तो कहीं नहीं जाने वाली मैं, बस घर पर ही। वैसे कहीं लग जाती हूँ, मरने लग जाती हूँ लोग। शायद किसी ने नहीं देखा हो, आप लोगों ने तो वालों को पता है कि गर्मी में मैं कितना आती हूँ। तो गर्मी जब भी आती है तो आते हैं कि नहीं भाई। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं वाइट एश के प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आपके एरिया में मिलने चाहिए ना। ये बड़ी सीधी सी आपके एरिया में मिलने चाहिए। 03-15-799-0595 ये नंबर आपके आसानी के लिए है, अगर आप कराना चाहते हैं 95।

वञो ऐं वठी अचो बाबा, तव्हां बि इस्तेमाल कयो वाइट एसी लवली क्रीम। हिन ईद ते त तव्हां लाज़मी जी अगरि तयार थींदा न त तव्हां वाइट एसी लवली क्रीम त लाज़मी वठो, ठीकु आहे। हुन सां गॾोगॾु जेको आहे टाइम ई थियो आहे त असां न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ वेंदासीं। हुन खां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आहिनि बाबा, सो तव्हां काॾे न वञो, इते वेठा हुजो। मां तव्हां सां गॾु हूंदमि पूरे पूरे टे बजे ताईं। सो हीअं वञी हीअं मोटा थी। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: अब आप सुनेंगे जे FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दुनिया नाजुक दौर में गुजरे पई, दुआ आए हमेशा लाए अमन बहाल थिए। चीनी वजीर आजम चयो पाकिस्तान इलाकई अमन लाइ हाकारी किरदार अदा कयो आहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बि गॾु हो। सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पानी खोड खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जो कापियूं फाड़े छड़ियूं। अपोजिशन MPs और सूबाई वजीरन विच में सख्त जुमलन की डेवट थी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीद चवे तो पानी जो मसलो अहम है, पैरियां उन गलायो मुखे गलायण की इजाजत न मिले तो कंखे भी गलायण न डींदुस। घरू वजीर जयाल लंजार चो तो अवां पानी से सियासत न कयो, मामले वाले रिथ आणियो, पोए पानी की मसले से गलाईंदासीं।

0: एबीबी सवा बी सवात मोटरवे ते वेन ऐं कोच में टकर 11 जणा फौत मोटरवे पुलिस मौजूद इस्माइला वेझो हादसे सबब 11 जणा फौत ऐं 7 जणा जख्मी थी पिया। बख्शापुर भरसां डोमकी ऐं चकराणी धुरन में जेड़ो हिकु ॼणो क़तल ज़मीन जे मालिकी तां झेड़े जे नतीजे में मोटर डोमकी मारिजी वियो धुरन में छिकटाण बरकरार। मिरापुर में घर मां नाराशत 29 वरन जी सुमेरा ज़ाल इमरान आरई जो घर मां लाश मिलियो। पुलिस जो चवण आहे त औरत जो मुड़ुस कराचीअ में कम कंदो आहे। औरत ॿारनि सां घर में रहंदी हुई। वाकिए जी जांच जारी आहे। फिलहाल कुझ नथो चई सघिजे। पदीन भरिसां नारी जो घर अंदर कमरे मां फाहो लॻल लाश हथ आयो। घोट इक़बाल सारिजो में 17 साल जी भाॻो ते जो घर मां लाश मिलियो। वारसनि जो पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार।
1: बस इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते। हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदार चवंदो त वॾेरो हुते वेठो
2: घणी कोन लॻी
1: टे लॻी अथसि। हिते रस्ते में ई साह ॾिने
3: वॾेरा माण्हू आहिनि। ख़ैर थी आहे लॻी
2: आहे। हेठि पिस्टल साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां
4: बस बीठो नंदीराणो ॿार हो पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर
1: आहे। केस दाख़िल अचानक हादसो थी रहियो आहे। बिलाल खान ते कराईंदा।
0: पुलिस वॾेरे शहीद सरके जे पुट तां क़तल थियल चौकीदार जो केस रोहण जूं तयारियूं करे छॾियूं। वाकिए खे तपाकी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वॾेरे जे पुट बिलाल सरके खे गिरफ़्तार करण लाइ

ओके जनाब, सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, भिरापुर, मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। हाँ जी जनाब, सो व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जा रहा है। आपकी मोहब्बत और समाथ और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं जनाब कि अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो आपने कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। तो पहले मैंने जैसे आप लोगों को बताया जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना भी आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है जितना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में जानना। दोनों प्रोडक्ट्स भाई आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। और हमने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में जाना कि वो किस तरह का प्रोडक्ट है, आप उसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सर आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी बताते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए अगर आप कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये जनाब आप लोगों के हर स्किन के हिसाब से तैयार की गई है। और जब आप इस्तेमाल करते हैं डी स्किन की जो क्रीम है ना, तो ये जदीद अज्जा से तैयार शुदा है। इसके अंदर जो है ना विटामिन ए बीट्स शामिल है और साथ साथ माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन भी है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फार्मूला है ना वो इतना जबरदस्त है, इतना क्वालिटी इसकी मस्त है। और इसके अंदर ग्लूटाथायोन भी मौजूद है। और ये क्रीम रात भर जो है ना अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सुबह उठकर अपना फेस वॉश करते हैं।

तब जाकर आपको महसूस होता है कि वाकई आप एक अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो ये विटामिन ई बीड्स मौजूद है ना, ये आप लोगों की स्किन को बहुत ही अच्छा वाला बना देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये जनाब, जब आप डी स्किन प्योरी क्रीम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला तो नहीं होगा ना बाबा, कोई मसला नहीं होगा। और इसके अलावा आप लोगों को जो है ना, अगर स्किन पर पहले से बहुत ज्यादा मसले हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर एक्नी का मसला, चेहरे पर आंखों के ये नीचे हल्के आ चुके हैं, काफी ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर आपकी स्किन जो है थोड़ी सी डार्क हो चुकी है, तो अगर आप अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं, अच्छा सा पॉलिश करना चाहते हैं, अपनी स्किन पर जो है ना वो कोई भी ऐसा निशान दाग नहीं देखना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का ये फार्मूला है ना, ये इतना कमाल का है, लाइट वेटेड फार्मूला है। एक तो मजे की बात मुझे ये लगती है कि इसके अंदर कोई भी इतनी सारी चीजें नहीं डाली गई है जो कि आपको लगे कि भाई इतनी सारी चीजें डाल दी हैं और क्या ही फायदा मिलेगा हमें, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि भाई लाइट वेटेड हो, जिसके अंदर नॉर्मल सी चीजें ऐड की गई हो, वो चीजें भी ऐसी ऐड की गई हो जो कि आप लगाएं और आपका चेहरा चमकना स्टार्ट हो जाए, सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल ही आपको जो है ना वो खूबसूरत बनाने वाला है डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अकेली नहीं है, जाहिर सी बात है इसके साथ हमने डी स्किन का फेस वॉश भी तैयार करवाया है। और डी स्किन का जो फेस वॉश है बिल्कुल जनाब, डी स्किन का जो फेस वॉश है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम फेस वॉश ही अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपकी स्किन को जो है ना वो हाइड्रेट करता है, आपके चेहरे को क्लीन करता है, आपके चेहरे पर जो है ना अगर बहुत ज्यादा ऐसे ड्राइनेस आ जाती है तो वो भी खत्म हो जाती है, आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन हेल्दी हेल्दी लगती है, जैसे ऐसा आपको ना महसूस होगा कि भाई आपकी स्किन में ना जान आ चुकी है, क्योंकि बहुत से लोगों की हम स्किन देखते हैं वो ना ऐसे बेरोनक सी लग रही होती है, बेजान सी लग रही होती है, अगर आपकी स्किन भी ऐसी, आप भी अगर ऐसी स्किन के मालिक हैं तो जनाब आप भी लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश, ये दोनों चीजें आप इस्तेमाल करेंगे साथ में, रात के टाइम लगाइए और सो जाइए, दो रातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाईजान आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरत होते रहिए, क्योंकि खूबसूरतियां बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आजकल के दौर में देखा जाए तो हर किसी की ये ख्वाहिश और डिमांड भी है कि हम खूबसूरत रहना चाहते हैं और खूबसूरत बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी बहुत ही आसान तरीकेकार, बहुत ही आसान फार्मूला जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो बस आपने डायल करना है 03-15-799-0595, बिल्कुल जी 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर कोर्ट में, सिटी में, शहर में अवेलेबल कराइए और आसानी से जाकर परचेज करती रहिए।

लगता है हाई ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से इस्तेमाल कर रही हैं, खूबसूरत होती जा रही है और बताते भी जा रहे हैं। यहाँ पर आपके पैनल की जाने बातें हैं तो मैसेजेस है उनको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा इरम हमारे साथ कहती ओ मेरी प्यारी दिलबर दोस्त प्लीज प्ले सॉन्ग न दुआ थी लगे न दवा थी लगे तुम्हारे इस्तेमाल करो जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और तक लाजमी लगेगी। और कहती हाय अल्लाह भी हमारे साथ रख लेते ऐसी है उम्मीद है कि अच्छी होंगी बहुत अच्छी होंगी और अल्लाह करीम आपको अपने सदका पंचतन का बहुत शुक्रिया था साथ मौजूद सक ले अच्छा वफा अब्दुल गफार खास के लिए कहते सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं मैं बहुत अच्छी हूँ और आप बताएं आप कैसे हैं कहती हैं आप मुझे अच्छा सा गाना सुनाएं बिल्कुल जी आपको अच्छा सा गाना सुनाया जाएगा और इरम कहती से जानी व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो शायद नहीं और अरीबा कहती सलाम आपी जान कल सारी बातें नहीं बताती हूँ आप लोगों को सो बस मत पूछा करे और मेरे खास अब्दुल्ला महर कहती है अस्सलाम वालेकुम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है बाजी सॉन्ग सुनाए हो मेरा चन्ना का ओके प्यारी भाई। मकसूद मल्ला कहते हैं सिद्रा मुस्कान जब आपका शो चलता है तो पड़ोसियों को ऐसा लगता है जैसे आप शो मेरे घर में कर रही हैं गलत ही मत करें उनके लिए तो जैसे घर में कोई पार्टी हो मेरी दुआ है कि आपकी हर विश पूरी हो आमीन आमीन आमीन बहुत शुक्रिया मकसूद मल्ला। डीजे मुझे अहमद मुगल का गाना सुनाओ तुझा सपना भाई ये प्रोडक्ट तो काफी लगा जी क्या रिजल्ट्स कैसे मिले और कहते हैं नहीं आपने मैसेजेस कर दिए अच्छा टॉपिक का जवाब देते हैं इनमें खस लगता है भी हो जाए दूसरे किटियाँ खाई तुमने खाई तो खाई क्यों ये बात है वैसे इंसान खाना बनाता है ना उससे पूछेंगे भाई खाना बनाना जो ना वो कितना मुश्किल काम होता है मुझे ये लगता है खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है और ये एक ऐसा काम है जिसके बिना इंसान जिंदा रह भी नहीं सकता तो सलाम है उन लोगों को जो खाना बनाते हैं। अच्छा ये मौजूद है सलाम सिद्रा व्हाइट एच लवली क्रीम आपकी तरह लवली लवली ये हम इस्तेमाल करते हैं लाड़काना से इमरान अली बिरोही भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं वेलकम करते हैं प्यारे भाई को और सकलीन अब्बास हमारे साथ अच्छा सकलीन भाई आपका बहुत शुक्रिया हम कहती हैं।

اوكي. अच्छा बाकी ये सही बात है, कुछ बातें तो मैं वैसे ही हंस के टाल देती हूँ, और वो जो हंस के टाल देती हूँ ना बातें, वो ये बातें होती हैं कि दरअसल उन बातों पर शायद मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है। वोट मोहम्मद अय्यब थी बुखा भी बोला थे वो भाई कहते तवांजो शो वेरी नाइस आए सलाम तवांजे वालेकुम असलम प्यारा भाई मोहम्मद तवांजो प्रोग्राम उदू पया वलेस मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से मोहम्मद हारून संदीलो है रोफ मक्सी का गाना बिल्कुल जी आज आपको सुनाएंगे। और ये हमारे साथ मौजूद है आपकी जान में वापस आ गई आप, आपको नाम नहीं बताऊंगी इतनी जल्दी, आप ही पहले गैस कीजिएगा कि मैं कौन हूँ, आप ये भी गैस कीजिएगा कि मैं किसके साथ वापस आई हूँ, और आप खुद ही आई होंगी और आप हमारी शोनी हमारे साथ मौजूद है, शोनी आपको वेलकम कर।

ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, तो आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि आपके एरिया में अवेलेबल होने चाहिए. मुझे ये लगता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे ना, तब आप जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं. आपके लिए ये मुश्किल बात नहीं होगी. जो लोग आकर मुझे ये कहते हैं कि बाजी ये सारे गोठ में नथो मिले, असाने करीबी जनरल स्टोर से नथो मिले, बाबा जेको तव्हांखे नंबर ॿुधाए वञे थो प्रोग्राम में, इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, मां नंबर तव्हांखे प्रोग्राम में लाज़मी इन लाइ घड़ी घड़ी ॿुधाईंदी आहियां त तव्हां इन ते ॿुधो पिया ऐं किथे कहिड़े एरिया में अवेलेबल न आहिनि प्रोडक्ट, जीअं हू अवेलेबल कराए सघे. सो तव्हां ज़रूर डायल कजो नंबर 03157990595. ठीक आहे, नंबर डायल कयो, पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल करायो ऐं उतां वञी आराम सां आसानी सां वठी अचो प्रोडक्ट, सही आहे, इस्तेमाल कयो. ऐं हाणे टाइम थियो आहे असां वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, उनखां पोइ वापसी तव्हांजे मोटी नासी. तव्हां कॾहिं न वञिजो, हिते वेठा हुजो. मां इहे वञी इहे मोटांदी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो.

0: एक नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म लिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। शदीद शहरन के गुजारिश कई वजे थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खील महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ। बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0338-96-343 and 0315-45-01-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए जो महसूस हो।
3: यार मछा क्या किथे वन्या, घर में बैठो यहाँ पर ठीक ही नया, शायद मुझे जिंदगी लायक का दवाई ना ही थी।
4: जो भला छा छा तो खे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार एक मसलो हो जाए न थो थे, पेट फूक जी वने थो, हथ पेर सुन थी वन था, सजो डी सुस्ती महसूस थे थी, कह कम जो रहंदो ही ना।
4: यार तुझा घना न बस एक ही मसलो आ।
3: हिक इहो की है?
4: हाँ तुझो मैदो खराब आ, छा तो न बुधो आ, मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त। जे मादो सही न होंदो त बुख भी न लगंदी, न हाजमो थींदो न ताकत मिलंदी। सोलो इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स, ये कुदरती जुजन मां तैयार कयल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बणजी, तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो मजबूत करे छींदो। बुख खुली वेंदई, खाधो सुठे नमूने हजम थींदई, पेट फूकजण खत्म, सुस्ती खत्म, जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी, पर ये किथे मिलंदो?
4: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस के सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी। आई राबते के लिए नंबर भी अथई 0305-58-00-616। शिफाए मैदा कोर्स, मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: सखर होम्योपैथिक क्लिनिक एन आई सी वी डी रोड सखर हैदराबाद लाड़काने जो मशहूर डॉक्टर मोहम्मद राशिद मीरानी DHMS RHMP इस्लामाबाद जोड़न संधन जो सूर कुंदरग जो सूर कंघे जो सूर हडन जो भरण अध मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जो सूर खारिश बारन में कद जो न वधण मोटापो इन अलावा पित्ते गुर्दे मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो टाइम सुबह 10 का शाम 6 वगे तई एड्रेस सखर होम्योपैथिक।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सुंद जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
4: सुंद जो आवाज।
6: बहुत मुख्तलिफ है, कुछ लोगों के चेहरे पर दाने बड़ी अजीब से निकल आते हैं और कुछ लोगों के चेहरे पर दाने नॉर्मल टाइप जैसे दाने होते हैं वैसे ही दाने होते हैं। तो अगर आप डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर पिंपल नाम से जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो आप परचेज करेंगे, ये जनाब आपके चेहरे को क्लियर बनाता है, एक्नी ट्रीटमेंट के लिए आपके चेहरे के एक्नी से फाइट करता है, और आपके चेहरे पर अगर बैक्टीरिया हो या ऐसी चीजें जो कि आपके चेहरे पर एक्नी बनाने का सबब बनती है उन चीजों को खत्म करता है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब तो ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है जनाब, आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और इसके अलावा एक और मजे की बात बताऊं तो जनाब, ये जो डॉक्टर पिंपल का ट्यूब है ना, इसे आप अपने चेहरे पर अप्लाई किस तरह करेंगे ये चीज भी आप लोगों को बताऊं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, रात का टाइम बहुत अच्छा टाइम होता है, रात के टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, अपना फेस वॉश अच्छे से कीजिएगा, अपना फेस क्लीन रखा करें। उन लोगों से मैं कहती हूं जिन लोगों के चेहरे पर दाने होते हैं तो वो तो अपना फेस मतलब लाजमी क्लीन रखा करें, बहुत ज्यादा क्लीन रखा करें। और बाकी जो लोग एक्नी नहीं आपके चेहरे पर फिर भी आप अपना चेहरा जो है ना वो क्लीन रखा करें, अच्छी बात होती है। तो चेहरे को क्लीन करें अच्छे से, उसके बाद अच्छे से सुखा लीजिए, फिर आपके चेहरे पर जहां जहां दाने हो, एक्नी हो, पिंपल हो, निशान हो, जलने का निशान है, चोट का निशान है, कोई भी निशान हो, कितना ही जिद्दी निशान, उसके ऊपर आपने डॉक्टर पिंपल का ये जो ट्यूब है ना ये अप्लाई कर देना है जहां जहां पर आपके मसाइल हो वहां वहां पर। या आप जो है ना लगाने के बाद सुकून से फिर आप सो जाइएगा, सुबह उठकर अपना फेस वॉश कीजिएगा, फिर आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो कमाल है ना वो हो चुका होता है और आपके चेहरे पर अच्छे वाले रिजल्ट्स आपको मिल चुके होते हैं। तो लाजमी आप ट्राई कीजिएगा डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब जो कि आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो वापस से आप नंबर डायल कीजिए, वो तो आपके पास मौजूद है ही है। तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595, ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाए डॉक्टर पिंपल का ट्यूब, व्हाइट एज की लवली क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन फेस वॉश, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, व्हाइट एज फेस वॉश, व्हाइट एज का ये जो विटामिन सी का फेस वॉश है ना ये भी आप लाजमी लगाकर देखिएगा। और इसके अलावा बहुत सारे और मजेदार प्रोडक्ट जो कि आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए, खूबसूरत रहिए और खूबसूरतियां बांटते रहिए, लोगों को बताइए कि भाई जान इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स मार्केट में मिल रहे हैं, तो जाइए परचेज कीजिए।

वैसे ये गाना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसके साथ साथ ये गाना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये गाना आजकल आप जरा अपने महबूब पर ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा चल रही ना, तो नंगे पैर अगर वो आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। बस सिर्फ आप सुनकर जरा अपने दिल को खुश कर लीजिएगा।

0: पोस्ट को लाइक और शेयर करें। आज आप लोगों के लाइक्स मुझे जरा कम नजर आ रहे हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए जिन लोगों ने नहीं किया। और उसके अलावा आपने जो है ना, अच्छा हाँ, आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं ये भी मुझे फरमाइश, काफी दिनों से हमारी इरम कर रही थी, तो आज हम ये वाला गाना भी सुनेंगे। अच्छा शोनी कहती है बिल्कुल बिल्कुल आप ही, मैं हूँ शोनी। हाँ भाई मैं आपको पहचानती हूँ। इरम कहती है ट्रैफिक में फंस जाना बहुत डेंजरस है। ओके और ये हमारे साथ कहते हैं तुम्हें क्या सुनाओ।
1: सिक्का सजन जी थी बार।
0: अच्छा बहुत शुक्रिया। ओके जी इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू राहिब माशूक बेल बहादुर या अली मदद जी मौला अली सलाम मदद आपको वेलकम करते। मजनू आपने लास्ट में लिख दिया है, बहुत शुक्रिया।

ओके जी, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा सिस्टर। हां जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं। फजीला कहती हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मोम।

कायनात इन सब स्वीट लड़कियों को। क्या बात है स्वीटी, गर्मी में फिर शो कैसे करती हो? और गर्मी का मौसम मुझे बहुत पसंद है, ना करें भाई ना करें। मैंने जिंदगी में पहला इंसान देखा जिसे गर्मी का मौसम पसंद है। सारे लोग जो भी इंजन से भी बात करो कहते ना बाबा ना सियारो भल्लो वा सियारो भल्लो वा। सो ही पेरियो मानू तब जे कुछ है तो गर्मी भली आहे। हलो बाबू अच्छा ये हमारे साथ हमारी उदास लड़की के दी ओपा मैं भी हूँ साथ साथ। ऐसा नहीं समझना निदड़ी अल्लाह को नहीं भाई, अल्लाह से तां की वडी हयाती दे खुश रहो पांजी जिंदगी में। आई जेके भी मसला मसाले सब तवां जी जिंदगी में गायब थी वने, आई तवां खुश रहो, आई तवां से गड रहो। और उनका अलावा ये है जी दर्द दिल कहती है के और कहती उससे भी ज्यादा मुश्किल है गर्मी में अपने गुस्से को काबू करना। तो वैसे सही बात की आपने। और हिदायतुल्लाह कहते टॉपिक आपके प्रोग्राम में क्या ज्यादा आपको मुश्किल लगता है, मुझे समझ नहीं आई बात। अच्छा आदिल बिल्कुल आपका गाना मैंने लगा लिया है लास्ट में, तो आप जरा इंतजार कीजिए आपका गाना हम सुनेंगे।

0: अच्छा इमरान खान रुक हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। निदली कहती है टॉपिक जीना जीना अच्छा। और स्मार्टो गोपांग हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम कंबर सिटी से, आप हमारे साथ, आपको शो पसंद आ रहा है। मास्टर मंजूर का आपने गाना लिखा है, चलिए जगह ना हो सका तो फिर कभी। और हजार खान जतोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम हजार भा, खुश आयो। आमिर खान वही सर हमारे साथ है, हेलो।
1: तबीयत मुझे न तबीयत,
0: आमिर खान महेश्वर वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: किशोर भाई कहते हैं शुक्र है आज मूड खराब हो सही हो जाए यहाँ तो खराब थी, मतलब खराब हो तो सही थी हो, सही हो जाए यहाँ तो खराब थी।
1: मुझे
0: चलो पोए तमाने नहीं गालते दी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी लग, वैसे तमा तो यो चयो ना तमा वो प्रोडक्ट लगाए ना जे अंदर खीर आए, सो खीर तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदर आए, सो ता व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाए रो सही
1: है।
0: अच्छा बिल्कुल बिल्कुल व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जे अंदर तमा के खीर भी मिलंदो, यानी कि तमा के मिलंदो ना, बस वो इन में अंदर आए ही तमा लगाए ना तो तमा जी स्किन के वो इन जा रिजल्ट मिलंदा, सो तमा व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगायो ए तमा के इलाही सारा भला भला रिजल्ट्स मिलंदा। उन खां अलावा ये सनावला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, हेलो जी जी क्या प्यारे भाग है। अच्छा चाचा खालिद कहते लास्ट शेरी लिंक कल वाह वाह चाचा, मतलब आप इतनी टाइम से शो सुन रहे थे, आपको सारी चीजों का अंदाजा हो चुका है कि हाँ जी अभी ये ऐसे होने वाला है और ऐसे होने वाला है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जी। निदा कहती वैसे ये ईद कब है, कल का दिन छोड़ कर फिर अगले दिन ईद है। नूरी से दुनिया भाई कहते ईद जुम्मे को है, हल्लुड़ी अदो तला केड़ी दुनिया में तो रहे।

अधे के त कुछ भी नथो लगे। चलो अस अड़ो कम था क्यों ही वारो लास्ट ट्रेक लगाऊं था प्रोग्राम में प्रोग्राम जो टाइम जो वो भी वही सफा थोड़ो बचो है। सो तुम्हारे मौजूद है प्रोग्राम है जनाब तुम्हारो व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड थे पे तीन व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अलावन सा सो तुम इस्तेमाल कर पाया खूबसूरत थो पाया खूबसूरती की हासिल कर पाया।

निदा, ये आप क्या कर रही है, मुझे इतनी हंसी आ रही है कसम से। तो वासु भाई आपको वेलकम हो गया। टाइम थोड़ा बचाना वरना वाकई शायरी पढ़ लेती मैं। चाचा खालिद कहते हैं ये दुनिया बड़ी जालिम है, किसी को खुश रहने नहीं देती। वैसे सही बात है।

जैसे ये गाना हमने मेल वर्जन में सुना है ना, इस गाने को हम कभी फीमेल वर्जन में भी सुनेंगे लेकिन फिर कभी, आज टाइम खत्म हो गया. और ये है जी हमारे साथ अब्दुल करीम मरी भाई, वेलकम हो गया आपको. इंशाल्लाह वरी तवां सां मुझी मुलाकात थियण वारी आहे सुभाणे वारे प्रोग्राम में 1 बजे खां 3 बजे ताईं असां तवां सां गॾु हूंदा आहियूं. हम करते हैं और तो अपना देखिएगा.

0: मोरो
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
6: पाणी कोर्ट खिलाफ़ एहतजाज अपोजिशन मेंबर स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं. अपोजिशन MPAs ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमिलनि जी ॾे वठि. अपोजिशन लीडर अली ख़ुर्शीद चयो त पाणी जो मसलो अहम आहे, पहिरियां हुन ते ॻाल्हायो. मूंखे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिली त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि. घरेलू वज़ीर ज़ियाउल अंजार चयो त

मां पाणी ते सियासत न कयो, मामूली वारी रथा आणियो, पोइ पाणीअ जे मसले ते ॻाल्हाईंदासीं। केबी में सूबाई सवाबी सवाद मोटरवे ते वेन कोच में टकर, 11 ॼणा फोत। मोटरवे पुलिस मूजिबि इस्माइला वेझो हादसे सबबि 11 ॼणा फोत ऐं 7 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: शदीद गर्मी सबब शहरन की गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे तई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
7: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले।

ब्लेंडर से लहसुन और प्याज की स्मेल खत्म करने के लिए पानी का एक कप लें, उसमें 2 से 3 कतरे नींबू की एक चुटकी बेकिंग सोडा डालकर इस पानी को ब्लेंडर में ऐड करें और 30 सेकेंड चलाएं ब्लेंडर को। उसके बाद वॉश कर लें। इसके बाद जो है ब्लेंडर से लहसुन अदरक की जो स्मेल आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी और ब्लेंडर में जो है खुशबू मतलब के चमक भी जाएगा आपका जो ब्लेंडर है वो।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओ। वॉचर साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 500 और ग्लोबल के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजे गए

0: फोन के चार्जर पे भी घरेलू लड़ाइयां होती हैं घरों में अक्सर बहन भाइयों की आपस में, फैमिली मेंबर्स की। आपने क्या सोच के मेरे मोबाइल के चार्जर को हाथ लगाया? मोबाइल का चार्जर नहीं हो गया जैसे खुदा ना खास्ता कोई डायमंड हीरा हो गया। नेक्स्ट वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम आदी।
0: वेलकम कहेंगे जनाब, कौन बात कर रहा है?
1: मोबाइल चार्ज न हूं अचानक घर पहुंचे जो कुछ मोबाइल लगल हों मीटर घूमी बिल्कुल इंसान काटी पवे मुझे मोबाइल बंद पे
0: लगता है। आपको बहुत तजर्बा है इस वाली लड़ाई का।
1: बिल्कुल तजर्बा है, पा झगड़ो कदो चार्जर
0: चले ठीक
1: है। चार्जर ही तक गाल बुधा चार्जर महंगाई दो लोग महंगा थी वरी लोकल जी मूल हों चार्ज कहना उन मोबाइल उन्हें कोने चार्जर जी मोबाइल हलो कोई नहीं खराब कावर लगे।
0: अच्छा मैं समझी थी ये मसला मेरे साथ है, आप लोगों के मोबाइलों में भी ये वाले मसले होते हैं। ओके ठीक हो गया आप तो। ये काम की बात है इसलिए आपने ये नुक्ता बताया और वैलिड नुक्ता बताया। बहुत शुक्रिया अदा आपने हमें ज्वाइन किया। जल्दी से दो से तीन दोस्तों के नाम लेना, 10-15 नाम लेने की जरूरत नहीं है। हेलो ठीक है आदा मेहरबानी तवाजी। ओके पे लड़ती है आवाम की बात हो रही है, घर में तो चलो चार्जर्स को लेके लड़ाई होती है, गली महलों में भी आपने नोट किया होगा ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं फसादात हो जाते हैं और कभी कभी वो लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये बताना है आपने मुझे, ठीक है। अवामी लड़ाई की बात हो रही है, घरेलू लड़ाई को एक साइड रख के अवामी लड़ाई पे बात करें। नेक्स्ट कॉलर की जानी जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: ठीक है
0: अल्लाह का शुक्र। यास्मीन क्या कहेंगी टॉपिक के हवाले से?
2: अभी मेरे ख्याल में ज्यादातर पाकिस्तानी अवाम सियासत से लड़ती
0: है। गली महल में जो लड़ाई होती है वो भी चार्जर्स पे होती है।

0: अमीन भाई।
1: चले मैं भी दुआ करूंगी आपके हक में कि आपका जो चार्जर लेके गया है वो चुपचाप से वापस रख जाए, अगर वो बता के रखेगा तो शायद लड़ाई हो जाए। ठीक है दादा, मेहरबानी, थैंक यू। ये कितनी गलत बात है ना, आप किसी की चीज उठा के चल दें। वैसे ये पाकिस्तानी आवाम है, इसका कोई हाल नहीं है। मस्जिद जो इबादत गाह है हमारी, कितना जो है मुकद्दस मकाम है, वहाँ से हम जूते उठा के ले जाते हैं। ये तो हाल है हमारे, है ना? नहीं है, हम नहीं है। ओके, विसरे गोठ का अनवर अली मरियादा भलीकार चौथा था वहाँ।

0: की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: बारिश कई वक्त बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दुश्मनी कम का पासो करियो, वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पेची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
3: हम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
4: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
3: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे।
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ।
7: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

काम, तो बात बात पे लड़ जाती है। अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है, अगर आप उनमें मुकमुकाओ करा भी दें तो फिर आपकी खैर नहीं है। जिसकी लड़ाई हो रही है वो लड़ाई छोड़ देंगे, उसके बाद आपके घर वाले ने स्टार्ट हो जाना है कि तुम्हें जरूरत क्या थी पराए जो है फड्डे में टांग अड़ाने की। हाँ, ऐसे ही सेंटेंसेस जो है ना फिर कहे जा रहे होते हैं कि आपको किसने कहा था, उनके झगड़े में आपने जाके जो है बीच में छलांग क्यों लगाई। अक्सर यू आर राइट और ये वाले सीन देखे हैं। ये हमारे साथ है सदाकत हुसैन मीरानी साहब, बच्चल शाह मियानी सखर से बाजी, एडवांस ईद मुबारक सेम टू यू। आपके शो में पहली मर्तबा शामिल हो रहा हूँ, उम्मीद है कि आप वेलकम कहोगी। हाँ, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है भाई, आपने सखर से मुझे ज्वाइन पहले रीड करना था, मैसेज बहुत लेट रीड किया है और अभी आपके स्टेशन पर जो है प्रोग्राम ये वाला नहीं होगा, आप समझेंगे ना जाने इन्होंने हमारा जो है। ना जाने इन्होंने हमारा जो है वो गाना चलाया या नहीं चलाया, गाना चल जाता है फिर बाद में फरमाइश। अच्छा, मुझे अपना प्रोग्राम जो है ना वो योर चॉइस टाइप का प्रोग्राम लगता है, सारे उसमें फरमाइश ऐसे कर रहे होते हैं जैसे मेरा प्रोग्राम जो है ना वो योर चॉइस प्रोग्राम है। जल्दी जल्दी बताएं, हम प्ले करते हैं आपकी चॉइसेस, जैसे कौन से चलने, लेकिन आप लोगों की फरमाइशें ना कभी खत्म नहीं होने वाली। जनाब वन एंड ऑनली बहुत ही प्यारी जादुई आवाज है नाहिद अख्तर की, एंजॉय कीजिए। स्ट्राइक और ट्रेक के बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद हम और आप फिर से साथ साथ।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: मिल्की बीट और जदीद माइक्रो बीट फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
4: Manish Ho Sari Tensions.
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन White Age Beauty Cream.

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: शदीद गर्मी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीत पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: 0333-3722-071
3: मीरपुर खास की आवाज।

कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं। एक दोस्त है कच्चा पक्का सा, एक झूठ है आधा सच्चा सा, एक ख्वाब अधूरा पूरा सा, एक फूल रूखा सूखा सा, एक अपना है अनदेखा सा, एक रिश्ता है अनजाना सा, हकीकत में अफसाना सा, कुछ पागल सा दीवाना सा, बस एक बहाना अच्छा सा, जीवन का ऐसा साथ ही है जो दूर हो तो कुछ पास नहीं। कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, कोई तुमसे पूछे कौन हूँ मैं, तुम कह देना कोई खास नहीं, तुम कह देना कोई खास नहीं। और वंस अगेन वेलकम कहेंगे अपने तमाम सामेन को जी मीरपुर खास FM 88 की लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे सब दोस्त हमारे, और बिल्कुल ही एंडिंग मराहिल में है प्रोग्राम। सुनो हम नाराज हैं तुमसे, सुनो हम नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज हैं तुमसे, बहुत मजबूर होना तुम, बहुत मसरूफ होना तुम, हमें तो याद करने का वक्त बर्बाद करने का, तुम्हें तो वक्त ही कब है हमको याद करने का। तो हम भी तुमको बता देंगे कि बहुत मजबूर हैं हम भी, बहुत मसरूफ हैं हम भी, हमें भी काम है कितने हैं, तब हम आंखें ना खोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे, कभी तुमसे ना बोलेंगे। सुनो हम नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज हैं तुमसे।

मैंने पूछा कैसे हो, मैंने पूछा कैसे हो, बदले हो या वैसे हो, रूप वही, अंदाज वही या फिर इसमें कमी कोई, हिजर का कुछ एहसास तो होगा, कोई तुम्हारे पास तो होगा, मैं बिछी मजबूरी थी, कब मंजूर मुझे ये दूरी थी, साथ हमारा कब छूटा है, रूह का रिश्ता कब टूटा है, आंख से जो आंसू बहते हैं, तुमको खबर है क्या कहते हैं, मैंने कहा आवाज तुम्हारी आज भी है हमराज हमारी, फूल वफा के खिल जाएंगे, फूल वफा के खिल जाएंगे, एक दिन फिर हम मिल जाएंगे, एक दिन फिर हम मिल जाएंगे। वंस अगेन वेलकम कहूंगी अपने तमाम सामेन को जी अमीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से, आपके साथ आरजे गुलनाज और जनाब अब आपसे इजाजत लेने का भी वक्त है। आपकी SMS भी शामिल प्रोग्राम करते चले। अक्सा कहती है गुल समझदार आप बोल रही हो, गुल शो सुनते हुए हैंड फ्री लगी होती है मोबाइल, अगर हंसती हूँ घर वाले बोलते हैं कि क्या पागल हो, बिला वजह हंस रही हो गुल, मैंने बोल दिया अम्मा गुल बोल रही है, नेट ऐसे तंग करता है जैसे सास बहू को तंग करती है, ये मेरी भाभी भी बैठी हुई थी वहीं, शुक्र करो आपकी पिटाई नहीं हुई है। कभी कभी हमारे मॉम्स जहाँ बैठी होती हैं उनके आसपास ऐसी जो है तशद्दुद वाली चीजें मौजूद होती हैं और उनका निशाना भी बिल्कुल परफेक्ट होता है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग तो बॉलर की विकेट पे बॉल दे मारते वक्त भी नहीं होती जितनी हमारी अम्मा कोई चीज उछाल दे हमारी जानिब, ऐसा ही है ना। एक दिन आदमी ने अपने बेटे को समझाने के लिए एक शीशे के सामने खड़ा करके पूछा बेटा शीशे में तुम्हें क्या नजर आ रहा है, बेटे ने जवाब दिया अब्बा दूसरी तरफ लोग नजर आ रहे हैं, फिर बाप ने उसे आईने के सामने खड़ा किया पूछा अब क्या नजर आ रहा है, बेटे ने जवाब दिया अब्बा मुझे अपना चेहरा नजर आ रहे हैं, बाप ने कहा देखो बेटे ये दोनों ही शीशे एक पर चांदी का मलमा चढ़ाया गया है तो इसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है, दूसरे पर कुछ भी नहीं चढ़ाया तो इसमें से तुम्हें दूसरी तरफ के लोग नजर आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम सिर्फ शीशा बनकर रहोगे तो तुम्हें दूसरे लोग नजर आते रहेंगे, लेकिन अगर तुमने अपने आप पर सोने या चांदी का मलमा चढ़ा लिया आईना बन जाओगे लोग तुम्हें नजर आना बंद होंगे, सिर्फ अपना आप नजर आएगा और जब अपना आप नजर आएगा तो अपना आप नजर आने से इंसान में तकब्बुर बढ़ता है, हमेशा शीशा बनकर रहना ताकि लोगों के दुख दर्द गम और तकलीफें तुम्हें नजर आती रहें। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, गर्मी का मौसम है, बहुत से परिंदे आपके घर की मुंडेर से छत से गुजरते हैं, कोशिश किया करें दाना और पानी किसी बर्तन में रख दिया करें और उसके साथ ही साथ कौआ जो है वो बाजरा नहीं खाता, बारीक छोटे छोटे दाना है वो नहीं खाता, कोशिश किया करें रोटी के टुकड़े उसके लिए रख दिया करें, ये वही बहुत छोटी सी नेकी है जो रोजे मैशर आपके जब तराजू का पलड़ा नीचे की जानिब झुकने लगेगा ये वाली नेकी जब उसमें डाल दी जाएगी तो वो बहुत भारी हो जाएगा, तो ये जो आपकी छोटी छोटी सी नेकियां हैं ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी मजबूत चेंजिंग्स लाएंगी, वो मजबूत चेंजिंग आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना देंगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं जहां में है जिंदगी का मकसद और उनके काम आना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह अजीज, जिंदगी ने दिया साथ नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे होनी है मुलाकात और कोशिश कीजिएगा इस ईद कुर्बान पर अपनी अना जिद नेगेटिविटी तकबूर घुमंड को मिटाएं, इन तमाम अशिया की कुर्बानी दें जो आपकी कुर्बानी को रब की बारगाह में मकबूल होने से रोके हुए हैं। जब भी कुर्बानी करें फर्स्टली आपकी तरजीह होनी चाहिए जरूरतमंद, फ्रिज में गोश्त प्लीज, बहुत से लोग जो है फ्रिज में गोश्त भरने के लिए कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी की डेफिनेशन उसकी मीनिंग समझें, ये असली हकदारों के लिए होता है। अस्मा आपका भी शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, आ रही है असली हकदारों के लिए कुर्बानी की जाती है मुस्तहिक लोगों के लिए, तो कोशिश कीजिएगा इस बार ईद कुर्बान पे आप सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लीजिए, अगर आपके अपने मिलने वाले आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपसे खफा हैं तो भी अना को मकदम नहीं रखिएगा, कुर्बान कर दीजिएगा वो तमाम नेगेटिविटी जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी लाएगी, और आई होप कि आपकी कुर्बानी रब की बारगाह में कबूल हो, उसके असल मकसद को पा जाएं, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह शब 8 बजे आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस इवनिंग।

0: Sabah Sunengi. GFM Network पर KTN.
1: आपकी दोस्ती के नाकाबिल शिकस्त करार. लागापन के वधीक मजबूत ब्रांड ते इतफाक शी जिनपिंग चयो त चीन पाकिस्तान सां दोस्ती खे घणी अहमियत ॾिए थो. विचोभर में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जो किरदार सहारा जोॻो आहे. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो त पाकिस्तान चीन खे पंहिंजो एतमाद जो दोस्त समझे तो. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चीनी हम मनसब सां बि मुलाक़ात कई. ॿिन्ही मुल्कनि विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ऐं यादाश्तनि ते सहियूं बि कयूं वयूं. ईरान अमरीका सां जंग जे ख़ात्मे लाइ शुरूआती फ्रेम वर्क ते त जंग जे ख़ात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि. शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सद ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे. फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे. आबदा हुर्मुज़ वारो मामिलो साहेली मुल्कनि जो आहे. फ्रेम वर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे. एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं. ईरान सां मुआहिदो मुकमल तौर ते तय नाहे थियो. असांजो मुआहिदो ओबामा वारे मुआहिदे खां उबतड़ हूंदो. मुआहिदे खे अञा कंहिं ॾिठो नाहे. न ई कंहिंखे नुक़्तनि जी ख़बर आहे. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त नाकाम माण्हुनि ख़राब डील नाया कंदो. परॾेही वज़ीर मार्को रूबियो चयो त ईरान सां डील ते कम हले पियो. थी सघे थो ईरान सां अॼु कंहिं मुआहिदे ते पहुची वञूं. आबदा हुर्मुज़ खोलियो वञे. वक़्तु तय करे एटमी मामले ते ॻाल्हियूं कयूं वञनि.

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 5:15 PM.
2: This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर निया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.
4: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़,
0: GFM 91.6.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
6: इस फोन के कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
7: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
8: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: हम एक खोखली औरत, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।
1: मेरी मोहब्बत के काबिल है।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
7: GFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: Here I am ready to cook.
1: मिली त कंहिंखे बि ॻाल्हाइण न ॾींदुसि। घरू वज़ीर ज़ियाल नज़ार जो चवणु हो त अवां पाणीअ ते सियासत न कयो, महमलीअ वारी रिथ आणियो, पोइ पाणीअ जी मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं।

0: सां क़तल थियल चौकीदार जो खून लोढ़ण जे चकर में वाके खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वॾेरे जे पुट बिलावल सरगीअ खे गिरफ़्तार करण लाइ के बि कदम न खया। पुलिस केस में का बि अगभराई न थियण जी तस्दीक करे छॾी। ग़रीब पोरत जो कुटुंब बासरनि जे खून सबबि ख़ामोश थी वियो। ज़रियनि जो चवण आहे त पुलिस बासर भोतारनि जे दबाउ ते जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बदिरां बचाए रही आहे। साझा वंदनि पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
1: सजावल में धी मुड़स सां गॾिजी पीउ खे क़तल करे छॾियो। ज़ाल मुड़ुसु गिरफ़्तार। पुलिस मूजिब ॻोठ कारो माछी में नाठे पंहिंजे सोहरे सावण माछी खे छुरियुनि जा वार करे क़तल कयो। वाकिए में मक़तूल जी धीउ फरज़ाना जी बि शामिल हुजण जो इंकशाफ़ थियो आहे। जवाबदार जानी ऐं फरज़ाना खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। वधीक जांच जारी आहे।
0: घोटकी वेझो नारीअ खे मुबैना तौर अगवा बाद इज्तमाही लजालत जो निशानो बणाइण वारे केस जी ॿुधणी नारी अदालत में पेश। नारीअ जो 164 वारो बयान रिकॉर्ड कराइण लाइ 1 जून जी तारीख़ मुक़रर। नारी चयो आहे त कंहिं बि जवाबदार सां लागापा न हुआ। मूं ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि। सोशल मीडिया ते फेक वॉइसिस रखियूं पई वञनि।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस होगा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: एंड व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

ईरान अमरीका सां जंग जे खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तसदीक करे छॾी। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल वकई चयो आहे त जंग जे खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती एमओयू ते

0: ईरान अमरीका सां जंग जे खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जे खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण नाहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो नाहे। अब्दाए हुर्मुज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुर्मुज़ बाबति घणो ज़िक्र नाहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कहती हूँ अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
3: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल खुदा गवाह बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।

0: ईरान अमरीका सां जंग जी खात्मे लाइ शुरूआती फ्रेमवर्क ते इतफ़ाक़ थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरानी परॾेही वज़ार जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त जंग जी खात्मे लाइ अमरीका सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि। शुरूआती MOU ते पहुचण जो मक़सदु ईरान ऐं अमरीका में मुआहिदे जे वेझो पहुचण न आहे। फ़िलहाल पाकिस्तान वफ़द मोकिलण जो इरादो न आहे। आबनाए हुरमज़ वारो मामिलो साहिली मुल्कनि जो आहे। फ्रेमवर्क में हुरमज़ बाबति घणो ज़िक्र न आहे। एटमी मामले ते बि ॻाल्हियूं न करे रहिया आहियूं।
1: सिंध असेंबली में अपोजिशन जो कराची में पाणी खोट खिलाफ़ एहतजाज। अपोजिशन मेंबर्स स्पीकर डाइस जो घेराव करे एजेंडा जूं कापियूं फाड़े छॾियूं। अपोजिशन MPs ऐं सूबाई वज़ीरनि विच में सख़्त जुमलनि जी ॾे वठि। अपोजिशन लीडर पाणीअ जे मसइले ते ॻाल्हाईंदासीं।

सिंध में पाणी खोड़ शिदत अख़्तियार करे वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में आबादगारनि जा मुज़ाहिरा ऐं धरना। ठिकराटो भरिसां बम्बली माइनर जी पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी खोड़ ख़िलाफ़ धरणो हयो। भान सईदाबाद में बि भान माइनर लुंडी शाख जी पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी जी खोड़ ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। कुंडरी जे थरटेल वाह जा आबादगारनि पाणी खोड़ ख़िलाफ़ रस्तनि ते निकिरी आया। सुबुह देरो में दराज़ा माइनर, ताज माइनर, इमाम शाख, सोभा शाख, सेठाचा माइनर, गरखड़ो वाह, मेहराब वाह में पाणी जे खोड़ ख़िलाफ़ एहतजाज।

0: क्वेटा धमाके में शहीद थियल पंज फौजी जवानन जे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में फौजीअ ज़ात सां तदफ़ीन। शहीद फौजी जवान अब्दुल मजीद लुंड जे दादू भरसां ॻोठ चाकर ख़ान लुंड ऐं शहीद फौजी जवान मुजीबुर रहमान लगारी जी तदफ़ीन सदस अबाणे ॻोठ कस्बो काछो में कई वई। फौजी अहलकार मोहबत अली वीराणी जी कंदकोट भरसां अबाणे ॻोठ बगन कमराणी में जनाज़े नमाज़ बाद सरकारी एज़ाज़ सां तदफ़ीन। शहीद हवालदार नदीम अख़्तर खे लकी ग़ुलाम शाह भरसां अबाणे ॻोठ में सरकारी एज़ाज़ सां मिटी मां हवाले कयो वियो। पाक फौज जे शहीद नादिर अली जो मढ़ सागर भरसां अबाणे ॻोठ चक नंबर ॿ में आणे फौजी एज़ाज़ सां तदफ़ीन कई वई। माण्हुनि जी वॾी अंगशिर जी शिरकत।
1: राति बसि इहो वियासीं हिते वॾेरे जी ओताक ते, हुते वॾेरो बि असांजो भाउ चौकीदारी कंदो अथसि। वॾेरो हुते वेठो
2: हुयो
1: टे लॻी अथसि, हिते रस्ते में साह ॾिनई। वॾेरा माण्हू बादशाह आहिनि, पर पोइ इन फायर थी आहे, इन खे लॻी आहे।
2: गेट ते पिस्टल साफ़ थींदो आहे कॾहिं तव्हां ॿुधो?
3: बसि बीठो न अमीराणो ॿार हो, पोइ हाणे कंहिंखे छा ख़बर आहे।
1: केस दाख़िल अचानक हादसो थी रहियो आहे, दलाल खान ते कराईंदा।
4: ठुल पुलिस वॾेरे सईद सरकीअ जे पुट हथां क़तल थियल चौकीदार जो खून लोढ़ण जी चकर में वाके खे तफ़ाक़ी करार ॾेई केस दाख़िल कंदड़ पुलिस वॾेरे जे पुट बिलावल सरकीअ खे गिरफ़्तार करण लाइ कंहिं बि कदम न खया। पुलिस केस में का बि अगभराई न थियण जी तस्दीक करे छॾी। ग़रीब पोरत जो कुटुंब बासरनि जे ख़ौफ़ सबबि ख़ामोश थी वियो। ज़रियन जो चवण आहे त पुलिस बासर भोतारनि जे दबाउ ते जवाबदार खे गिरफ़्तार करण बदिरां बचाए रही आहे। सञा वंदन पारां जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।
5: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: इट्स 10 एएम। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: कतर के दौरे ते दोहा पहुंचल ईरानी वफद के कतरी वजीर आजम बेन अख्तियारन से मुलाकात। मुंज मदसन की बहाली आपदा हुरमुस से गाल बोल। मोहम्मद बाकर कालेबाफ की क्यादत में परदेही वजीर अब्बास राक्षी बेन कतरी अख्तियारन से मुलाकात कई। मुलाकात दौरान ईरानी सरकारी बैंक जो गवर्नर भी मौजूद हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जी चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मुतफा लागापन समेत खिते की सूरतयाल से गाल। चीनी सदर पाक चीन दोस्ती के नाकाबले शिकस्त करार दई छो। लागापन के मजबूत बयान से इतफाक। शी जिनपिंग चीन पाकिस्तान से दोस्ती के घनी अहमियत दे तो। विच ओभर में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार सारा जोगो है। वज़ीर-ए-आज़म सदर शी जिनपिंग से स्ट्रेटेजिक हमाहंगी दुनिया में अमन तरक्की गड़ियल पुठी डेई रहा है। तब्दील थन्दड़ दुनिया में पाक चीन दोस्ती अमन ए खुशहाली के लिए गडियल कुवत रही। सामे कई मुख्तलि नामंदियों फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी चीनी वजीर आजम से गैर रस्मी मुलाकात।
6: फील्ड मार्शल हैज जस्ट कम बैक फ्रॉम तेहरान एंड यू डिडंट वांट टू मिस दिस ग्रेट विजिट एंड यू शोड मी दैट यू विल बी ज्वाइनिंग मी इन दिस मीटिंग एंड यू हैज बीन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द नाइट एंड ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल back and forth with Iranian leadership and American leadership along with Deputy Prime Minister Ishaq Dar with his counterparts not only in Iran but also in the Gulf countries. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever and lots of ground has already been covered. Things are moving in the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and
5: ईरान ए अमेरिका विच में हलंदड़ गाड़ियों दौरान दुरुस्त रुख बैग फराई थी रही है। अमन की बहाली ए मामूल वाले इक्तसादी संदर्भ लाए घर की कम करो पवो। बीजिंग में तकरीब में खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहिए है दुनिया विच ओभर के बोहरान सबब नाजुक मरहले में गुजरी रही है। पाकिस्तान अमेरिका ईरान विच में सालिसे लाए दिल से कम किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नायब वजीर आजम साकदार ईरानी अमरीकी विच ओभर की क्यादत से राबता करे अहम किरदार अदा किया है।

0: तत्वों की भरपूर टोपियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज़
2: GFM 91.6।